FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी पासवाड़ा का ये माही चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 सितंबर 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन, सुप्रभात।

FM-Band 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी पासवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आमिर चैनल है, सवेरे के 6 बजने को है। कुछ देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस

0: यूएफबीयू के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। सेहत के बारे में बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियां हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य ही धन है, जिसे अर्जित करने के लिए बहुत अधिक धन निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। संयमित संतुलित दिनचर्या ही पर्याप्त है। बचपन से हमें एक मंत्र सिखाया गया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह भी सेहत के लिए एक अच्छा मंत्र है। लेकिन कितने लोग इस मंत्र को जीवन में आत्मसात कर पाते हैं? जो करते हैं वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और जो नहीं कर पाते वे समय समय पर बीमार पड़कर शरीर को धीरे धीरे अशक्त करते चले जाते हैं। सदियों पहले तपस्वी लोग सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते थे क्योंकि उनका शरीर पुष्ट रहता था। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास कुछ युवक ज्ञानार्जन के लिए पहुँचे तो युवकों को देख कर स्वामी विवेकानंद बड़े निराश हुए। वे सभी युवक कृशकाय थे, बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें सबसे पहले सलाह दी कि जाओ पहले खेलो कूदो और अपना स्वास्थ्य बनाओ, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे जीवन की निशानी है और स्वस्थ मन से ही सही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। स्वामी जी की बात सुनकर युवकों ने उनका कहना माना और अपनी सेहत को जल्दी दुरुस्त कर लिया। फिर स्वामी विवेकानंद से मिले तो स्वामी विवेकानंद ने प्रसन्न होकर उनको जीवन की दिशा के कुछ सूत्र दिए। स्वामी विवेकानंद स्वयं स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहते थे। उनकी दिनचर्या बहुत संतुलित थी, उनका खान पान भी सात्विक था। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व बहुत सुदर्शन था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने विश्व कल्याण की दिशा में अपना जो योगदान किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके साथ जितने युवक भी जुड़े वे सन्यासी हुए, सबके सब अपनी सेहत के प्रति सजग थे। उत्तम स्वास्थ्य विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। समाज में अनेक उदाहरण देखते हैं कि बड़े बड़े धन वाले भी अक्सर बीमार मिलते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं लेकिन सेहत ठीक नहीं रहती। तरह तरह की बीमारियों ने शरीर पर कब्जा कर लिया है। जीवन का सारा सुख वैभव खराब स्वास्थ्य के कारण नष्ट हो रहा है। ऐसी दौलत किस काम की जो हमें उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान ना कर सके। हमें सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने जीवन में आरोग्य का सदा ध्यान रखें।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। ये जो प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: समूह स्वर में गाए इस देशगान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, आज का एपिसोड 202।

तीर्थराज प्रयाग में भरतवाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरतवाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। निश्चित प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर यानी कि प्रातः 6:45 पर वागड़ी कार्यक्रम खेती ने बात, 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत जिसमें आज आप सुनेंगे लक्ष्मण भाई और साथियों की आवाज में गाई लोक भजन, प्रातः 7:20 का समय वातायन, वातायन में आज आप सुनेंगे वार्ता जन जन की भाषा हिंदी, वार्ताकार होंगे डॉक्टर कीर्ति सोलंकी। प्रातः 7:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, प्रातः 8 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, प्रातः 8:15 का समय उत्कृषक के अपने कार्यक्रम कुछ दिल से, आज विश्व नदी दिवस है और आज विशेष माही वगड़ की गंगा पर। प्रातः 8:45 पर राजस्थानी लोक संगीत जिसमें आज सुप्रिया पाठक की आवाज में लोकगीत, प्रातः 9 जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 9:10 पर सुगम संगीत, दोबारा सुगम संगीत का आनंद लेंगे 11 सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रोशन भारती की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें, 11:30 पर फिल्म संगीत, दोपहर 12 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

एक नजर सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। शाम 6:30 का समय रोजाना की तरह जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम

0: अभी आप सुन रहे थे आज के प्रातःकालीन और सायंकालीन कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है वागड़ी कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाई ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों, आपने सब जानो कि फसल नी अच्छी पैदावार बल्ले आपड़ी जे खेतर नी मिट्टी है इनमें पोषक तत्व हैं, ये बहुत जरूरी रहे हैं। और जैविक मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और आवाज सूक्ष्म तत्व हैं, इन्हें अगर कमी थी जा तारे आपने खेतर में खाद या जो उर्वरक है इन्हें नाखवानी आवश्यकता पड़े है। पर अगर आपने आनो ज्यादा या कम उपयोग कर तो ये आपकी फसल और खेतर की जो मिट्टी है इन्हें बेने बल्ले नुकसानदायक साबित है। अटले आनो संतुलित उपयोग करो बहुत आवश्यक है। संतुलित उपयोग ने अगर आप बात करो तो फसल नी जे जरूरत है और मिट्टी नी जे स्थिति है एने अनुसार खातर या उर्वरक आपने खेतर में नाखवो जुए। आने बल्ले सप्ती के पहले तो आपने मिट्टी नु यानी जे मृदा है इनी जांच करावी दीवी जुए, जेने अपना जे मृदा परीक्षण ने नाम थे कि जाना है। आना मृदा परीक्षण थे कि आपने खबर पड़ेगा क्या आपने खेतर में कई कई पोषक तत्व कम है और कितनी मात्रा में ने आलवानी आवश्यकता है। क्योंकि किसान भाई अगर आपने खाद या उर्वरक जो है इनु असंतुलित उपयोग करेंगा तो इन्हें थी कि नुकसान थाएगा। वधारा नाइट्रोजन अगर आपने फसल में आल देंगा तो फसल देखागा तो हरी भरी, पर ई धीरे धीरे ही पड़वा लगेगा और इन वजह थे कि फसल नो अपने जो उत्पादन है ये कम थी जाएगा। पोटाश की जो कमी है इन्हें थे कि पौधे ही कमजोर थाए ने इनमें रोग है ये जल्दी पकड़ी ले है। वधारे रासायनिक खाद नाखवाते कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये भी धीरे धीरे कम थाती जाएगा और वधारे खातर नाखी ज रहा तो आपड़ी जो खेती ने लागत है इनमें भी बढ़ोतरी थी जा तो खेती ने लागत बढ़ी जाए। अटले कुल मलाई ने अगर आपड़े उर्वरक या खातर नो संतुलित उपयोग करेंगा तो आपने आ सब जो नुकसान है इन्हें थाएंगा और आना जो लाभ है ये आपने मिलेगा। और लाभ नहीं अगर आपने बात कर तो आना थे कि यही फसल ने पूर्व पोषण मिलेगा, इन्हें वजह थे कि आपने उत्पादन है ये ठीक मिलेगा, खेतर नी जो मिट्टी है इनकी सेहत है ये बनेली रहेगा, लागत भी कम आवेगा तो इन्हें थे कि आपने लाभ है मुनाफो है ये वधारा मिलेगा। आज ये पर्यावरण है या जे आ भूजल है भूमिगत जल है ये वधारे खातर ने दवाई आपणे नहीं नाखंगा तो ये प्रदूषित नहीं थागा। तो आ जे रासायनिक खाद है एनो अगर आपणे संतुलित उपयोग करेंगा तो आपणे लाभ मिलेगा। और किसान भाई अगर आपणे रासायनिक खाद ने हाथे हाथे जैविक खाद है जेम के आ गोबर नो खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, हरी खाद है, आनो भी आपणे उपयोग खेतर में करवो जोईए। आने थे कि जे मिट्टी में से सूक्ष्म जीव है इनकी संख्या बढ़े, जे कि है आपड़े एक तरह थे कि आपड़े फसल बल्ले उपयोगी रहे और खेतर में आ लंबा समय तक इन्हें उपजाऊ बनावा में भी सहायक बने हैं। अटले हमेशा सही मात्रा में सही समय ऊपर ने सही तरीका थे कि इस खातर आपने खेतर में आलवो जुए। आ सही आपने आज न खेती नु विज्ञान है, आना महत्व ने आपने समझू है और उर्वरक नो संतुलित उपयोग करवो है। सब जाने किसान भाई के मानव शरीर हो, पशु हो, खेतर ने मिट्टी हो या काई भी एवी चीज जिनमें असंतुलित मात्रा में कई चीज में उपयोग करे कोई भी तेनो नुकसान तो था है। अति थी जा ये हमेशा नुकसान करे, चाहे मनुष्य नो स्वास्थ्य हो, आपकी फसलों नो स्वास्थ्य हो या आपने पशुधन नो स्वास्थ्य हो। तो आने सबने स्वास्थ्य ने बनाई रखवा बल्ले हर चीज नो संतुलित उपयोग करो।

शाम 7:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 का समय समाचार संध्या दिल्ली से। रात 9:00 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। रात 10:00 का समय दिल्ली केंद्र से जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण के डेली हाइलाइट्स। 10:20 पर फिल्म संगीत।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मण भाई और उनके साथियों के आवास में आदिवासी लोकगीत, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता जन जन की भाषा हिंदी। वार्ताकार है डॉक्टर कीर्ति सोलंकी।
1: मानव जाति के लिए भाषा परम आवश्यक है। आज मनुष्य ने प्राणी जगत में जो ऊंचा स्थान पाया है वह केवल भाषा की ही बदौलत है। महात्मा गांधी ने कहा है कि जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं होती वह राष्ट्र गूंगा होता है। जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तब हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसे राष्ट्र के अधिकतर लोग प्रयोग में लाते हो और समझते हो। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि देश की एक भाषा ऐसी हो जो पूरे देश को जोड़े, संपर्क भाषा का काम करे, इसलिए राष्ट्रभाषा का नारा पैदा हुआ। इसके लिए सभी ने हिंदी को उपयुक्त पाया। इसके राष्ट्रभाषा रूप के प्रवर्तक, समर्थक और क्रियान्वयक अहिंदी भाषी ही थे। तिलक, बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचार्य, ये सभी अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी में भाषण देते थे। हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र भी अहिंदी भाषी क्षेत्र से ही निकले। हिंदी के प्रचार के लिए ही बांग्ला भाषी केशव चंद्र सेन ने गुजराती भाषी दयानंद सरस्वती को अपना शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गुजराती भाषी कन्हैयालाल माणिताल मुंशी और तमिल भाषी गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। उसी के फलस्वरूप 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 पारित हुई, जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की कल्पना और आयोजन करने वाले मनीषी अनंत गोपाल शेवड़े मराठी भाषी थे। इसका प्रथम अधिवेशन नागपुर में तो दूसरा मॉरिशस में हुआ और ये दोनों ही क्षेत्र अहिंदी भाषी थे। ये सभी तथ्य स्पष्ट करते हैं कि अहिंदी भाषियों ने किस प्रकार हिंदी का सम्मान और श्रीवृद्धि की। जब भारत आजाद हुआ तब संविधान निर्माण के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का पूर्ण प्रयास हुआ, परंतु कुछ तर्कों की वजह से कि हिंदी प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से उतनी समर्थ नहीं है कि राजकार्य चलाया जा सके, अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए उसकी सहयोगी भाषा बना दिया गया और हिंदी को समर्थ बनाने के प्रयत्न करने के लिए तथा राजकार्य में हिंदी के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया, राजभाषा समिति का प्रावधान हुआ और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। राजकार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय और हिंदी में वैज्ञानिक विषयों पर लेखन और अनुवाद के लिए राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापित की गई, परंतु 1963 में ही पुनः विरोध शुरू हो गया और संविधान में संशोधन कर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए हिंदी की सहयोगी बना दिया गया, जो आज तक जारी है एवं हिंदी राष्ट्रभाषा के सम्मान को प्राप्त न कर सकी। यहाँ जापान का उदाहरण उल्लेखनीय है। जापान जब आजाद हुआ वहाँ भी प्रश्न उठा था, परंतु वहाँ की सरकार ने साफ कर दिया।

कि जापानी भाषा का ही प्रयोग करो। वैज्ञानिक शब्दावली कुछ भी हो, नए पारिभाषिक शब्द लिए गए और भाषा को समृद्ध बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं उसे सक्षम और विकसित करने संबंधी बातों का उल्लेख है। इस दृष्टि से यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट लिखा है कि राजभाषा हिंदी को विकसित करने और समृद्ध करने का दायित्व केंद्र सरकार का है। उसका स्वरूप समन्वित और उदार हो। क्षेत्रीय भाषाएं भी यह अनुभव करें कि वे राजभाषा के रूप में विकसित हिंदी के निकट हैं और उसके विकास में हमारा भी भाग है। इसलिए राजभाषा हिंदी का स्वरूप कैसा होगा, इसे स्पष्ट किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रति भारतीय संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वह किस प्रकार हिंदी भाषा के प्रसार, विकास एवं समृद्धि हेतु उत्तरदायी होगी। यहाँ पर भाषा के प्रसार में समाचार पत्र पत्रिकाओं की सर्वाधिक भूमिका रहेगी, जबकि उसके विकास में शिक्षण एवं शोध संस्थानों तथा व्याकरणों की विशेष भूमिका है। इसी तरह भाषा की समृद्धि में लेखकों और साहित्यकारों की सर्वाधिक भूमिका रहती है। कामकाज करने की दृष्टि से भारतीय संघ के राज्यों का 3 श्रेणियों में विभाजन किया गया। इन तीनों श्रेणियों में भाषा के स्तर पर कार्य और व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया। भारत के अलावा हिंदी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, मॉरिशस, क्यूबा, रूस, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर तथा मेक्सिको सहित लगभग 70 देशों में प्रयुक्त की जाती है। चीनी और अंग्रेजी के बाद आज हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। साठोत्तरी कवि लीलाधर जगुड़ी द्वारा हिंदी भाषा के विषय में दिए गए विचार उल्लेखनीय है। अपने साक्षात्कारों में वे लिखते हैं कि हिंदी मुझे हिमालय जैसी भव्य और ऊंची, समुद्र जैसी व्यापक और गहरी, गंगा जैसी सतत प्रवाहमान लगती है। हिंदी ने जब अपने को भारतीय भाषाओं में विश्व भाषाओं की अनुदिति से जोड़ा, तब उसका आधुनिक गद्य संवर गया। वे कहते हैं कि देवनागरी लिपि के कारण हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है। दुनिया की ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जो देवनागरी में अविकल न लिखी जा सकती हो। सबको समाने के लिए यह जरूरी है कि हिंदी अपने व्यंजनों की तरह अपने स्वरों को भी रस्व करने को तैयार रहे। जिस ध्वनि के लिए हिंदी में वर्ण चिन्ह नहीं है, उसे दूसरी भारतीय भाषाओं से ले लेना चाहिए। नागालैंड, मेघालय और मणिपुर की हिंदी भले ही बिहारी हिंदी से भिन्न होगी, लेकिन होगी तो आने दीजिए मिजो हिंदी, तमिल हिंदी, मलयाली हिंदी को। सिर्फ पंजाबी हिंदी और बिहारी हिंदी से काम नहीं चलने वाला। यह तभी संभव है जब मणिपुरी भाषी और कन्नड़ भाषी लेखक हिंदी में अपनी स्थानीयता का रस और वैभव लेकर आएंगे। भाषा जितनी वर्ण संकर होगी उतनी शक्तिशाली होगी। हिंदी को एक दिन अपने वर्ण संकर रूप में हम समृद्ध तर देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का कहना है कि जब बोलकर लिखने की तकनीक विकसित हो जाएगी तो हिंदी सर्वाधिक सफल भाषा होगी। यूनिकोड का आगमन हिंदी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज हिंदी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के फॉन्ट्स में एकरूपता इसके लिए अनुकूल वातावरण बना रही है। यूनिकोड के आगमन से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाएं सहजता से इंटरनेट पर आने लगी हैं। हिंदी के ब्लॉगों में बढ़ोतरी और ईमेल की बहुलता ने उसकी श्रेष्ठता को कायम करने में पर्याप्त सहायता की है। इंटरनेट हिंदी के विस्तार में अहम भूमिका अदा कर रहा है। ई समाचार पत्र पढ़ना एक क्रांति जैसा है। ब्लॉग लेखन, ई पत्रिकाएं और ई बुक्स ने हिंदी के प्रचार प्रसार और व्यवहार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विज्ञापनों का भी हिंदी से गहरा नाता है। विज्ञापन बाजार ने भी हिंदी को अपनी वैश्विक छवि बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े विविध संस्थानों ने भी हिंदी को बढ़ावा दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने विविध क्षेत्रों को पारिभाषिक शब्दों के हिंदी रूप कोश तैयार करवाए हैं। वहीं केंद्रीय हिंदी संस्थान और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से विदेशी विद्यार्थी हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। कवि लीलाधर जगुड़ी कहते हैं, यदि

0: प्रेम को संसार के साहित्य का अध्ययन करना है तो उसे देवनागरी लिपि अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मंडारिन की लिपि बहुत कठिन है। समय समय पर मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाकर हिंदी भाषा को समृद्ध किया जा रहा है। सारांशतः हिंदी की शब्द संपदा पर्याप्त समृद्ध है, इसका सांस्कृतिक प्रवाह निरंतर गतिमान है। इस भाषा में प्राचीन व आधुनिक विचारों के संवहन की अद्भुत क्षमता है। हिंदी भाषा दिन प्रतिदिन आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। 21वीं सदी भारत की है, इसे हिंदी की शक्ति भी बनाना होगा। संख्या व आंकड़ों की दृष्टि से हम भले ही प्रथम स्थान पर आ गए हो, पर श्रेष्ठता और उपयोगिता की दृष्टि से नंबर एक पर आना शेष है। इसके लिए बहुत कार्य करना है, परंतु सबसे पहला काम सर्वसम्मति से संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार दिलाना है। अब जरूरत है ऐसी हिंदी की जो विश्व संवाद कर सके, जो विश्वव्यापी संप्रेषण एवं सामर्थ्य से संपन्न हो। मेरा विश्वास है हिंदी इस दिशा में बढ़ रही है, समय देवता इसे गति दे रहा है। अंत में मैं बाल कवि बैरागी की कविता से अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। जन्म जन्म जन जन की भाषा, कण कण की वाणी कल्याणी, हिंदी अपने घर की रानी। भूख नहीं है इसे राज की, प्यास नहीं है इसे ताज की, करती आठों प्रहर तपस्या, रचना करती नव समाज की, याचक नहीं नहीं है आश्रित, सदा सनातन अवढल दानी, हिंदी अपने घर की रानी, हिंदी अपने घर की रानी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन में वार्ता, जन जन की भाषा हिंदी, डॉक्टर कीर्ति सोलंकी से। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ही माही चैनल है। लीजिए सुनिए हमारे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम हम है रही प्यार के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म के गाने के साथ हसरत जयपुरी के बोल संगीत शंकर जयकिशन का आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आज हम याद कर रहे हैं स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को, बॉलीवुड संगीत के इतिहास में एक बहुत ही अहम नाम। अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में गाया ये गाना। आइए अब सुनते हैं येसुदास के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, त्रिशूल फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल खयाम का संगीत।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडिले।

0: इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: टावर हाउस से सुनते हैं अगला गाना, मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं राजा रानी फिल्म से ये गाना। किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

0: कार्यक्रम का अगला गाना तलाश फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे थे आज कार्यक्रम में लता मंगेशकर की आवाज में सारे गाने। जानिए इनके बारे में और बातें आज के फनकार कार्यक्रम में 9:30 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वहीं इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के

0: बाद यह फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
1: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
4: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले

0: दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
2: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृहमंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया।

0: इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है उद्घोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ दिन से में आपका स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, सुबह की ये सुनहरी किरणें हवाओं में घुलती ताजगी और प्रकृति के गोद से आती ये मधुर सी आवाज, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, आज का दिन भी कुछ खूबसूरत करने के नाम कर दीजिए। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार। आकाशवाणी बांसवाड़ा से प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिन से, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी आवाज प्रेरणा उपाध्याय। दोस्तों, आज कुछ बातें होंगी जिन्हें सिर्फ कहा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें शब्द कम पड़ जाते हैं, और कुछ नदियां होती हैं जो केवल पानी की धारा नहीं होती, बल्कि अपने साथ सभ्यता, संस्कृति, खेत खलियान, लोकगीत और जीवन बहाकर ले जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही नदी के बारे में, माही, वागड़ की जीवन रेखा, वागड़ की माही माता। श्रोताओं, आज विश्व नदी दिवस है, 28 सितंबर। एक ऐसा दिन जो हमें दुनिया की नदी के महत्व को समझने और उन्हें स्वच्छ, जीवंत और सुरक्षित रखने की याद दिलाता है। तो आइए आज हम कुछ दिल से बात करते हैं नदी से, पानी से, जंगल से और उस जीवन से जो इन सब के बिना अधूरा है।

तो एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ दिल से में। दोस्तों, कभी नदी के किनारे बैठकर देखिएगा, नदी कुछ कहती नहीं लेकिन बहुत कुछ सुना देती है। नदी का पानी जब बहता है तो सिर्फ अपना रास्ता नहीं बनाता, वह रास्ते में आने वाले खेतों को सींचता है, प्यास बुझाता है, पेड़ों को जीवन देता है, वहीं पक्षियों को आसरा और इंसान को यह एहसास कराता है कि जीवन का सबसे बड़ा संकेत प्रकृति के पास है। और जब बात फागड़ की हो तो माही, जी हाँ, माही माता हमारी जीवन रेखा है और उसका नाम अपने आप अपने शब्दों में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज अब चलते हैं माही की यात्रा पर, आपको ले चलते हैं इस संगीत की ओर।

0: जी हाँ श्रोता, नदी किस सागर में मिलती है पता नहीं, लेकिन एक बड़ा रूप ले लेती है। तो चलिए अब माही की यात्रा पर कुछ माही की बात करते हैं। माही नदी, जी हाँ दोस्तों, यह विंध्याचल के अमरकंटक पर्वत श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से आमझरा नामक स्थान से माही माता की उत्पत्ति हुई है। यह हमारे शास्त्रों में कहा जाता है और ये राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के खांतू गांव के पास से बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में होती हुई गुजरात की सीमा पर जाती है और वहां जाकर अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों ये तो बात हुई उसकी उत्पत्ति और कहां मिलती है, लेकिन उसके बीच में जो इस वागड़ अंचल को स्वर्ग बना जाती है उसकी हम बात करेंगे। जी हाँ, नदी की असली यात्रा किलोमीटर में नहीं मापी जाती, उसकी यात्रा तो उन लोगों की आंखों में दिखाई देती है जो उसके पानी से अपनी फसल उगाते हैं। उस किसान के चेहरे पर दिखाई देती है जिसके खेत में हरियाली आती है और उस बच्चे की मुस्कान में दिखाई देती है जिसे साफ पानी मिलता है और उस बुजुर्ग की स्मृतियों में दिखाई देती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी नदी के किनारे गुजार दी। माही सिर्फ बहती नहीं, माही जीवन को बहाती है। माही हमारे लिए नदी से जाता है, खेत में पानी आता है तो घर में खुशहाली आती है। इसलिए माही बचेगी तो हमारा जीवन भी खुद सुरक्षित रहेगा। कितनी सरल बात है दोस्तों, लेकिन कितनी गहरी। नहीं बचेगी तभी जीवन बचेगा। जी श्रोताओं, इसलिए हमें नदियों को तो बचाना ही है और हमारी माही माता, हमारी गंगा, हमारी नर्मदा, हमारी सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, यही तो हमारी ये यात्रा है। दोस्तों बात आगे भी करेंगे नदी की, लेकिन इसके पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: तेरी वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना

0: बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बात बड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है जानकारी।